भगवान का घर है। हमारी सभी सुनने वालों की सेवा में मेरे तरफ से हर एक को सादर नमस्कार और आदाब। यह है ब्रॉडकास्टिंग स्टेशन रेडियो SBS का प्रोग्राम जो आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में बस पेश किया जा रहा है। सुनने वालों, आज सोमवार का दिन है। आप सभी सुनने वालों को शुभ सुबह शुभ दिन बस पेश किया जा रहा है रेडियो SBS का पूरा और पूरा टीम की तरफ से। जो बीमार या लाचार है भगवान से तंदुरुस्त के लिए प्रार्थना या तो अल्लाह से दुआ किया जा रहा है उन सभी के दुख और हमें हमेशा के लिए दूर करने के लिए। जिन लोगों के घर पर खुशियां ही खुशियां है, शादी सालगिरह विवाह संस्कार जन्मदिन या तो प्यारा प्यारा बच्चा पैदा हुआ है, तहे दिल से बधाई और मुबारकबाद पेश किया जा रहा है रेडियो SBS का पूरा और पूरा टीम की तरफ से। सुनो वालों, हर एक इन्फॉर्मेशन के लिए इन्फो के लिए रेडियो SBS का टेलीफोन नंबर है 03-265-65-60 और स्टूडियो का टेलीफोन नंबर है 03-262-66-11। मैं हूं आपका खिदमत गुजार रबीन। यहां से प्रोग्राम भजन यात्रा आप सभी सुनने वालों की सेवा में पेश किया जा रहा है। भजन यात्रा प्रोग्राम का पहला भजन हमेशा होता है हरि हरन की आवाज में सुबह सुबह लो शिव का नाम, पेश किया जा रहा है हमारी सभी सुनने वालों के लिए और सभी भक्त प्राणियों के लिए।

रेडियो SBS की जरिए पेश की गई सुबह सुबह लो सीओ का नाम हरि हरन की आवाज में सुंदर सा भजन आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में बस पेश की गई। सुनने वालों भजन यात्रा प्रोग्राम आप सभी सुनने वालों की सेवा में पेश किया जा रहा है और इस प्रोग्राम को आप जरूर और जरूर सुनते ही रहना जहां जहां पर भी आप सभी प्रोग्राम को सुनते हैं। सोमवार का दिन है, आप सभी सुनने वालों को शुभ सुबह शुभ दिन बस पेश किया जा रहा है रेडियो SBS का पूरा और पूरा टीम के तरफ से। अगला भजन जो प्रोग्राम में पेश किया जा रहा है शंकर शिव गोविंद के आवास में, ये सुंदर सा भजन आप प्रोग्राम

गोविंद के आवास में ये सुंदर सा भजन आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में पेश की गई रेडियो SBS के जरिए। अभी आपने सुना प्रोग्राम भजन यात्रा आप सभी सुनने वालों की सेवा में पेश किया जा रहा है। और आज का प्रोग्राम जो है सुनने वालों आप जरूर और जरूर सुनते ही रहना जहां जहां पर भी आप सभी ये प्रोग्राम को सुनते हैं। अगला भजन जो प्रोग्राम में पेश किया जा रहा है आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में रेडियो SBS के जरिए जरूर और जरूर सुनते ही रहना। हम आपको ले चलेंगे प्रोग्राम में सुरेश वटकर जी की ओर। सुंदर भजन जो प्रोग्राम में आपकी बार पेश किया जा रहा है।

रेडियो SBS की सर ये सुरेश वतकर की आवाज में ये सुंदर और अति सुंदर भजन बस प्रोग्राम में पेश की गई आप सभी सुनने वालों की सेवा में। चले प्रोग्राम में गणेश पाठक जी की आवाज में एक सुंदर भजन

सभी सुनने वालों की सेवा में रेडियो SBS के जरिए अभी आपने सुना गणेश पाठक जी की आवाज में ये सुंदर सा भजन जो पेश की गई। सुनने वालों, रेडियो SBS का वेबसाइट रेडियो SBS.NL उसी वेबसाइट के जरिए अपना मोबाइल टेलीफोन टैबलेट आईपैड या तो कंप्यूटर के जरिए प्रोग्राम आप सुन सकते हैं और सभी इंटरनेट रेडियो के जरिए भी ये प्रोग्राम सुनाई देता है दुनिया की।

रेडियो SBS की जरिए सुंदर सा भजन आप सभी सुनने वालों की सेवा में पेश की गई रेडियो SBS की जरिए अभी आपने सुना। भजन यात्रा का प्रोग्राम आप सभी सुनने वालों की सेवा में पेश किया जा रहा है और इस प्रोग्राम को आप जरूर और जरूर सुनते ही रहना। अगला भजन जो प्रोग्राम में पेश किया जा रहा है आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में, चले मिलकर ये सुंदर भजन को सुनते हैं।

ये सुंदर सा भजन बसमरु गांवे पेश की गए आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में आसर उम्मीद है। ये भजन आपने सुना और बेहद पसंद किया, जो आप सभी सुनने वालों की सेवा में अनूप जलोटा जी की आवाज में पेश की गई है।

और सुंदर भजन बस प्रोग्राम में पेश की गई आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में सुनने वालों चले यहाँ से प्रोग्राम में आरती भजन की ओर हम आपको ले चलते हैं और आरती भजन पेश किया जा रहा है रेडियो SBS का पूरा और पूरा टीम के तरफ से हमारी तरफ से हमारा पूरा परिवार की तरफ से आप सभी सुनने वालों के लिए सभी भक्त प्राणियों के लिए उन सभी के लिए जो बीमार या लाचार है सभी दुखित प्राणियों के लिए सभी बच्चों के लिए सभी जो आज नौकरी करने वाले हैं काम करने वाले हैं सभी को शुभ दिन पेश किया जा रहा है और हमारे सभी सुनने वालों जो दुनिया के कोने कोने में रेडियो SBS का प्रोग्राम को सुनते हैं उनके लिए और उनके पूरा परिवार के लिए हर एक के लिए शुभ सुबह शुभ दिन के साथ ये सुंदर आरती भजन पेश किया जा रहा है।

ये गाना उस प्रोग्राम में पेश की गई आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में। रेडियो SBS का प्रोग्राम आप सभी सुनने वालों की सेवा में पेश किया जा रहा है और आज का प्रोग्राम सुनने वालों आप जरूर और जरूर सुनते ही रहना। कहीं प्यार ना हो जाए फिल्म का नाम, कमल खान, कुमार सानू, अलका, नितिन मुकेश और साथियों की आवाज में। और गाना का बोल है ओ प्रिया ओ प्रिया, कहीं प्यार ना हो जाए।

जुबिन एन नीति मोहन की आवाज में ये गाना बस प्रोग्राम में पेश की गई आप सभी सुनने वालों की सेवा में रेडियो SBS के जरिए 2-32-62-66-11 स्टूडियो का टेलीफोन नंबर है। कहो ना प्यार है उसी फिल्म का टाइटल सॉन्ग प्रोग्राम में उदित नारायण और अलका जी की आवाज में।

ये फिल्म का टाइटल सॉन्ग बस प्रोग्राम में पेश की गई आप सभी सुनने वालों की सेवा में रेडियो SBS का प्रोग्राम पेश किया जा रहा है। और चले अब की बार कुमार सानू एनाल का जी की ओर। किसी से तुम प्यार करो कहीं देर ना हो जाए। कुमार सानू एनाल का हम आपको ले चलते हैं फिल्म का नाम अंदाज़। एक फिल्म जो 2003 में

अंदाज फिल्म का नाम कुमार सानू एन अलका की आवाज में गाना बस्तरुगा में पेश की गई आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में। सुनने वालों रेडियो SBS का वेबसाइट radio.sbs.nl से वेबसाइट के जरिए भी अपना मोबाइल फोन के जरिए हमारा प्रोग्राम को आप सुन सकते हैं। चलिए एक बार फिर से कुमार सानू और अलका की ओर हम आपको ले चलते हैं। गाना जो अभी बार पेश होगा एक बड़ी ही खूबसूरत प्यार भरी गाना है।

आवाज में ये गाना बस प्रोग्राम में पेश की गई आप सभी सुनने वालों की सेवा में। कुछ दिल ने कहा फिल्म का नाम, एक फिल्म जो 2002 में रिलीज किया गया है, और आप सभी सुनने वालों की सेवा में उदित नारायण और अनुराधा पोटवाल की आवाज में ये गाना पेश की गई है। एक गाना की ओर हम आपको ले चलेंगे, फिल्म का नाम कुछ कुछ होता है। एक बार फिर से उदित नारायण।

उदित नारायण और अलका जी की आवाज में गाना उस प्रोग्राम में पेश की गई। फिल्म का नाम कुछ कुछ होता है, उसी फिल्म का गीत उस प्रोग्राम में पेश की गई। आप सभी सुनने वालों की सेवा में खूबसूरत नखमे प्रोग्राम में पेश किया जा रहा है। चले शान और संजीवानी की आवाज में ये गाना।

पीस की आवाज में ये गाना बस प्रोग्राम में पेश की गई आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में। चलिए अब की बार मरहूम मोहम्मद रफी की ओर हम आपको ले चलते हैं। गाना जो प्रोग्राम में पेश किया जा रहा है

0: तुम्हारे डैडी की मर्जी के खिलाफ हमारा इस तरह से और मिलना।
1: किशोर कुमार के आवाज में खास गाना बस प्रोग्राम में पेश की गई। फिल्म का नाम था कटी पतंग। चले अब की बार फिर से किशोर कुमार होगा, लेकिन किशोर कुमार के साथ लता जी की आवाज में गाना पेश किया जा रहा है।
0: बुरा मत मानना जरीन, मैं नहीं चाहता मेरी वजह से तुम्हें कोई परेशानी उठानी पड़े। और फिर ये भी तो सच है कि मैं एक मामूली घर का लड़का हूँ।
2: फिरोज, तुम मुझे प्यार करते हो।
0: लेकिन जरीन, सिर्फ प्यार से तो सब कुछ नहीं होता। तुम बड़े घर की लड़की हो, तुम्हारे डैडी
2: मुझे प्यार करते हो।
0: फिर मेरे कॉलेज का यही आखिरी साल है, बीए के बाद अब पढ़ भी नहीं पाऊंगा। पता नहीं कब कैसी नौकरी मिले। और
2: फिरोज, तुम मुझे प्यार करते हो।
0: प्यार तो करता हूँ जरीन, बहुत प्यार करता हूँ। लेकिन
2: प्यार करते हो ना।
0: पर जरीन, तुम
2: तुमसे मिला था प्यार, कुछ अच्छे नसीब थे।

कुमार एन लता मंगेशकर की आवाज में खूबसूरत गाना बस प्रोग्राम में पेश की गई आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में आसरा उम्मीद है गाना आप सभी ने सुना और बेहद पसंद किया है। किशोर कुमार की आवाज में अब की बार फिल्म नजराना का गीत पेश किया जा रहा है।

किशोर कुमार की आवाज में खूबसूरत सा गाना बस प्रोग्राम में पेश की गए आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में। फिल्म का नाम था नजराना, उसी फिल्म का गीत अभी आपने सुना जो आज की प्रोग्राम में पेश की गई सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में। शहरी उत्तराखंड से रेडियो SBS का प्रोग्राम पेश किया जा रहा है और आज का ये प्रोग्राम जरूर और जरूर सुनते ही रहना। मोहम्मद रफी की आवाज में ये गाना पेश किया जा रहा है।

0: हवा में छम छम हमारे संग संग चले।
1: कनगो आज के प्रोग्राम में पेश की गए किशोर कुमार एंड लता मंगेशकर के आवाज में, किशोर कुमार एंड लता जी के आवाज में ये गाना आज के प्रोग्राम में पेश हुआ है आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में। चलिए गाना की ओर हम आपको ले चलते हैं।

पश्चिमी मोहम्मद रफी की आवाज में ये गाना पेश की गई आप सभी सुनने वालों की सेवा में। चले मोहम्मद रफी की आवाज में एक और खूबसूरत सा गाना पेश किया गया।

आज उड़ता हुआ एक पंछी गाना बस प्रोग्राम में पेश की गई आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में आसरों में देखिए गाना आप सभी ने सुना और बेहद पसंद किया है। लता मंगेशकर प्रोग्राम में आपकी बार

आप सभी सुनने वालों की सेवा में जो पेश किया जा रहा है दिल ही तो है फिल्म का नाम, दिल ही तो है फिल्म का नाम। मुकेश जी की आवाज में आपकी बार ये गाना पेश किया जा रहा है। द हार्ट ऑफ द मिलियंस, द माइटी मुकेश की आवाज में ये गाना पेश किया जा रहा है। आइडो फिल्म दिल ही तो है गाना जो प्रोग्राम में पेश किया जा रहा है।

द हार्ट ऑफ द मिलियंस द माइटी मुकेश की आवाज में ये गाना बस प्रोग्राम में पेश की गई आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में। चलिए प्रोग्राम में हेमंत कुमार की ओर हम आपको ले चलते हैं।

पेश की गई आप सभी सुनने वालों की सेवा में, और वो भी किशोर कुमार एंड आशा जी की आवाज में। किशोर कुमार एंड आशा जी की आवाज में ये खूबसूरत गाना प्रोग्राम में पेश की गई है।

रेडियो SBS की सरिया किशोर कुमार एंड लता जी की आवाज में ये गाना बस प्रोग्राम में पेश की गई आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में। सुनवालो टेम्स रेव 237 शहर उत्तरा से ये प्रोग्राम आप सभी सुनवालो की सेवा में बस पेश किया जा रहा है और आज का ये प्रोग्राम जरूर और जरूर सुनते ही रहना।

0: reclame, nieuws en het weerbericht op Radio SBS.
1: इस तरह आशिकी का असर छोड़ जाऊंगा।
2: मैं कुमार सानू और मैं आ रहा हूँ आपके शहर एम्स्टरडाम में।
3: मैं अनुराधा पौडवाल आ रही हूँ एम्स्टरडाम में।
1: राह में उनसे मुलाकात हो गई।
2: 6th of September, unforgettable 90s.
3: के लिए ला रहे हैं रागा इवेंट्स फ्रॉम हॉलैंड।
2: क्या आप अपना टिकट जल्दी से बुक कर लीजिए।
4: रागा इवेंट्स प्राउडली प्रेजेंट्स अनफॉरगेटेबल 90s लाइव इन कॉन्सर्ट द टाइगर ऑफ

हाफिज, एक फिल्म जो 2020 में रिलीज किया गया है, उसी फिल्म का गाना उस प्रोग्राम में पेश की गई। चलिए प्रोग्राम में अबकी बार अदनान सामी और महालक्ष्मी आयर की आवाज में फिल्म खुशबू का गीत पेश किया जा रहा है, जरूर और जरूर सुनते ही रहना।

में ये गाना बस प्रोग्राम में पेश की गई है। सुनने वालों हर एक इन्फॉर्मेशन के लिए रेडियो SBS का टेलीफोन नंबर है 03-265-65-60। मोहम्मद इरफान एट द फिल्म किक ये गाना पेश किया जा रहा है।

सभी सिद्ध वालों की सेवा में रेडियो SBS का प्रोग्राम आप सभी सुनने वालों की सेवा में पेश किया जा रहा है। और आज का प्रोग्राम सुनने वालों आप जरूर है और जरूर सुनते ही रहना। स्टूडियो का टेलीफोन नंबर है 03-262-66-66-11। कुमार सानू और कविता कृष्णमूर्ति प्रोग्राम में

मोहब्बत कुमार सानू और कविता कृष्णमूर्ति की आवाज में ये गाना बस प्रोग्राम में पेश की गई। कुमार सानू और कविता कृष्णमूर्ति के बाद सोनू निगम एंड सुनिधि चौहान के आवाज में एक गाना पेश किया जा रहा है, पहली नजर का पहला प्यार फिल्म का।

नाम उसी फिल्म का एक खूबसूरत सा गाना पेश किया जा रहा है सोनू निगम और सुनिधि चौहान की आवाज में।

गाना बस प्रोग्राम में पेश की गई आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में। आसरा उम्मीद है कि गाना आप सभी ने सुना और बेहद पसंद किया है। रेडियो SBS की जरिए जो पेश की गई अभिजीत की आवाज में आज के प्रोग्राम में एक और खूबसूरत गाना पेश किया जा रहा है। फिर

कर्स एक फिल्म जो 2002 में रिलीज किया गया है। फिल्म कर्स का गीत अभी आपने सुना, कुमार सानू और कविता कृष्णमूर्ति की आवाज में। अब की बार एक गाना पेश किया जा रहा है सोनू निगम और अनुराधा पोटवाल की आवाज में।

रेडियो SBS की जरिए सोनू निगम और अनुराधा पोटवल की आवाज में गाना प्रोग्राम में पेश की गई। हम आपको ले चलेंगे अब की बार अनुराधा पोटवल और उदित नारायण की ओर।

में ये गाना बस प्रोग्राम में पेश की गई आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में। रेडियो SBS का स्टूडियो का टेलीफोन नंबर है 0322 66 66 11। इसी तारगी नंबर पर टेलीफोन नंबर पर हमेशा और हमेशा आप तार कर सकते हैं। तुलसी कुमार एन राहत फतेह अली खान की आवाज में ये गाना पेश किया जा रहा है।

रेडियो एसबीएस की जरिए राहत फतेह अली खान और तुलसी कुमार की आवाज में ये गाना बस प्रोग्राम में पेश की गई आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में। बहुत सी सुनने वालों है जो इस वक्त रेडियो एसबीएस का प्रोग्राम को सुनते हैं, सभी को वेलकम स्वागत किया जा रहा है और प्रोग्राम जरूर सुनते ही रहना।

और कविता कृष्णमूर्ति की आवाज में ये गाना बस पेश की गई। चले शान और महालक्ष्मी आयर की ओर।

रेडियो SBS की जरिए सुनिधि चौहान की आवाज में गाना बस प्रोग्राम में पेश की गई आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में। चले प्रोग्राम में उदित नारायण और अलका जी की आवाज में ये गाना पेश किया जा रहा है।

रेडियो SBS की जरिए उदित नारायण और अलका जी की आवाज में ये गाना बस प्रोग्राम में पेश की गई आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में। चलिए प्रोग्राम में अरिजीत सिंह की ओर हम आपको ले चलते हैं।

सानू जी की आवाज में ये गाना बस प्रोग्राम में पेश की गए आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में आशा उम्मीद है खूबसूरत सा गाना आपने सुना कुमार सानू की आवाज में सुनकर और बेहद पसंद किया है। के और शिल्पा राव की आवाज में चले मिलकर ये गाना सुनते हैं। ऐ दो फिल्म बचना ऐ हसीनो।

रेडियो SBS की सर ये गाना बस प्रोग्राम में पेश की गई के और शिल्पा राव की आवाज में गाना भी आपने सुना आज की।

चले प्रोग्राम में अब की बार जुबिन और साथियों की आवाज में ये गाना बस प्रोग्राम में पेश किया जा रहा है। रेडियो SBS का प्रोग्राम आप सुन रहे हैं, जरूर सुनते ही रहना।

रेडियो एसपीएस की जरिए ये गाना बस प्रोग्राम भी पेश की गई विशाल मिटून और साथियों की आवाज में अभी आपने सुना रेडियो एसबीएस की जरिए ये खास गाना जो पेश हुआ है एक तो फिल्म खुदा हाफिज फिल्म सड़क नंबर 2 अंकित तिवारी और लीना भोज की आवाज में ये गाना प्रोग्राम में अबकी बार

Marina Vos की आवाज में ये गाना पेश किया है, सड़क नंबर 2 फिल्म का नाम, फिल्म जो 2020 में रिलीज किया गया है। सुनने वालों हर एक इंफॉर्मेशन के लिए 0325656560 पर हमेशा और हमेशा आप तार कर सकते हैं। नया फिल्म भूल भुलैया नंबर 2, उसी फिल्म का एक

0: विशाल शेखर के शान और तुलसी कुमार की आवाज में गाना पेश की गए बागी नंबर 3 से। अभी आपने सुना ये खास गाना। चले प्रोग्राम में अरमान मलिक की ओर हम आपको ले चलते हैं और गाना का बोल है मेरा इंतजार करना।
1: फिर रोशनी खिड़की से आएगी

रेडियो SBS की सरिये खास गाना बस प्रोग्राम में पेश की गई आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में, और वो भी अरमान मलिक की आवाज में गाना भी आपने सुना जो आज की प्रोग्राम में पेश की गई सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में।

0: En nu reclame, nieuws en het weerbericht op Radio SBS.
1: इस तरह आशिकी का असर छोड़ जाऊंगा।
2: मैं कुमार सानू और मैं आ रहा हूँ आपके शहर एम्स्टरडाम में।
3: मैं अनुराधा कोरवाल आ रही हूँ एम्स्टरडाम में।
1: राह में उनसे मुलाकात हो गई।
2: 6th of September, unforgettable 90s.
3: आपके लिए ला रहे हैं रागा इवेंट्स फ्रॉम हॉलैंड।
2: आप अपना टिकट जल्दी से बुक कर लीजिए।
4: रागा इवेंट्स प्राउडली प्रेजेंट्स अनफॉरगेटेबल 90s लाइव इन कॉन्सर्ट द टाइगर ऑफ

सुनने वालों की सेवा भी। आसरो मीठे की ये गाना आप सभी ने सुना और बेहद पसंद किया है। फिल्म दौलत, उसी फिल्म का गीत आज की ये प्रोग्राम में पेश की गई आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा भी। हम आपको ले चलेंगे आज की प्रोग्राम में हमरास फिल्म का गीत की ओर, सॉन्ग बाय महेंद्र कपूर और गाना का बोल है तुम अगर साथ देने का वादा करो। रेडियो वेस्ट में इस पर आपने चून किया है संगीत भरी स्टेशन का प्रोग्राम, आप सभी सुनने वालों की सेवा में पेश किया जा रहा है।

कपूर की आवाज में फिल्म हमराज का गीत अभी आपने सुना, जो आज की प्रोग्राम में पेश की गई आप सभी सुनने वालों की सेवा में। सुनने वालों, रेडियो SBS का वेबसाइट radio.sbs.nl से वेबसाइट के जरिए अपना मोबाइल टेलीफोन टैबलेट आईपैड कंप्यूटर के जरिए भी आप हमारा प्रोग्राम को सुन सकते हैं। बहुत सी सुनने वालों, बस मोबाइल फोन के जरिए, मोबाइल टेलीफोन के जरिए हमारा ये प्रोग्राम भी सुनते हैं और उसी वेबसाइट पर तरह तरह की खबरें, न्यूज, मौसमी समाचार और आपका दाख हॉरोस्कोप यानी कि ज्योतिष शास्त्र भी होता है। बहुत सी सुनने वालों होते हैं जो जाकर अपना दाख हॉरोस्कोप को भी देख रहे हैं, अपना ज्योतिष शास्त्र रेडियो SBS का वेबसाइट पर रोजाना आपका दाख हॉरोस्कोप इसी वेबसाइट पर होता है radio.sbs.nl। जरूर अपना मोबाइल फोन पर आप जाइए इसी वेबसाइट पर। गाना जो अभी बार प्रोग्राम में पेश किया जाएगी, हम आपको ले चलते हैं खास तौर पर द हार्ट ऑफ द मिलियंस द माइटी मुकेश की ओर। मुकेश जी की आवाज में एक गाना बस प्रोग्राम में आज के प्रोग्राम में पेश किया जा रहा है।

गाना बस प्रोग्राम में पेश की गई आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में। चलिए प्रोग्राम में मरहूम मोहम्मद रफी की ओर हम आपको ले चलते हैं। अब की बार ये गाना पेश किया जा रहा है।

और रेडियो SBS के जरिए मरहूम मोहम्मद रफी की आवाज में ये गाना उस प्रोग्राम में पेश की गई आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में। आशा उम्मीद है गाना आप सभी ने सुना और बेहद पसंद किया है। चलिए एक बार फिर से मरहूम मोहम्मद रफी की ओर हम आपको

मरहूम मोहम्मद रफी की आवाज में ये गाना उस प्रोग्राम में पेश की गई आप सभी सुनने वालों की सेवा में। रेडियो SBS का प्रोग्राम आप सभी सुनने वालों की सेवा में बस पेश किया जा रहा है। चले अब की बार मुकेश और लता मंगेशकर की आवाज में ये गाना पेश किया जा रहा है, मुकेश और लता मंगेशकर की आवाज में ये गाना आज की प्रोग्राम में पेश किया जा रहा है। लागी तुम से लगन साथी झूठे ना, गाना जो प्रोग्राम में अपनी बार पेश किया जा रहा है।

लता जी की आवाज में ये गाना बस पेश की गई है। लागी तुम से लगन साथी छूटे ना, काफी पुरानी फिल्म का गीत बस प्रोग्राम में पेश की गई आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में। लता मंगेशकर एक बार फिर से प्रोग्राम में अब की बार ये गाना पेश किया जा रहा है।

रेडियो SBS के जरिए ये गाना बस प्रोग्राम में पेश की गए आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में लता मंगेशकर की आवाज में खूबसूरत सा गाना भी आपने सुना। आज के प्रोग्राम में जो पेश की गई सभी सुनने वालों की सेवा में चले गाना किशोर कुमार की आवाज में आज के प्रोग्राम में पेश किया जा रहा है

ये काफी खूबसूरत गाना आज के प्रोग्राम में पेश की गई है। मिले कहीं कहीं दो अजनबी, सॉन्ग बाय किशोर कुमार। सुनने वालों चले आज के प्रोग्राम में एक पाकिस्तानी मूवी का गीत बस प्रोग्राम में पेश किया जा रहा है। नहीं के आवाज में गाना को आप सुनते ही रहना, जो आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में पेश किया जा रहा है।

हिट की आवाज में गाना प्रोग्राम में पेश की गई एक पाकिस्तानी मूवी का गीत, एक पाकिस्तानी फिल्म का गीत उस प्रोग्राम में पेश की गई आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में। नहीं के बाद हम आपको ले चलेंगे द मैन विद अ गोल्डन वॉइस दलित महमूद और गीता दत्त की आवाज में गाना जो पेश किया जा रहा है आप सभी सुनने वालों की सेवा में।

गीत मिला रेडियो SBS के जरिए अभी आपने सुना। चलिए अपनी बार द हार्ट ऑफ द मिलियंस द माइटी मुकेश की ओर हम आपको ले चलते हैं और माइटी मुकेश की आवाज में ये गाना पेश किया जा रहा है।

सुन बलो, हमारा आज का प्रोग्राम बस यहीं से खत्म समाप्त होने पर आ गए हैं। आज के प्रोग्राम जो है सुनने के लिए लाख लाख शुक्रिया, धन्यवाद। आसरा उम्मीद है प्रोग्राम सुनकर और काफी पसंद किया है। मैं आपका खिदमत गुजार रबीन। हर एक इन्फॉर्मेशन के लिए, इन्फो के लिए टेलीफोन नंबर है 0365656560। बस आप सभी सुनने वालों से हम फिर मिलेंगे।

हेलो नमस्ते और आदाब। मैं हूँ आपकी आरजे अंशिली क्रमलाल, जो आपका तहे दिल से स्वागत करती है प्रोग्राम गीतों के लहर पे। हेलो अलमागल, दिस इज यू आरजे अंशिली क्रमलाल, तू वार्त वेलकम हेट इन इट प्रोग्राम गीतों के लहर। Wilt reageren? Kan het altijd. Surf naar de website www.radiosbs.nl of bel gerust met 030-262-6611. En voor alle andere info kunt u altijd bellen met 030-265-6560. Het eerste liedje van vandaag is...

एली रे एली, क्या है ये पहेली? ऐसा वैसा कुछ तो हुआ है सहेली, ये शायद फिल्म यादें. En het volgende liedje in het programma Gito en Kelleher via Radio SBS is de titelsong van de film Janam Samchakuru, gezongen door Anu Malik en Hema Sardesai.

हमारे दो फिल्म ढाई अक्षर प्रेम के ये समाये नजारे खो गए हैं, हम कसम से तुम्हारे हो गए हैं। एंड अवर द फिल्म जुड़वा त्वे कॉम्स ऑन द अनु मालिक एंड नेहा कक्कर, ऊंची है बिल्डिंग 2.0।

0: पट्टा मेरा वस द फिल्म मुझे कुछ कहना है इन इसके सौंदर अनुराधा श्रीराम द फिल्म अजनबी कौम कसम से तेरी आंखें अय्यारे अय्या
1: अय्या।

आप हमारी जान बन गए समुद्र मिथुन, विशाल मिश्रा एंड अजीज कौर. दिस लीजिए क्वाम आई द फिल्म खुदा हाफिज. U luistert naar het programma गीतों के लहर via Radio SBS. Gezongen door Kishore Kumar en Manhar komt het volgende liedje uit de film Professor Pyarelal. Gaega Gaeja or Muskuraeja.

जीना भी क्या है जीना, तेरी बाहों में जीना है. इसके साथ दोस्त सलमा आ गए बप्पी लहरी. En het volgende liedje in het programma Gietom Kelleher is gezongen door Kamal Khan. Uit de film Jinni met Sunny komt Roeberoe.

0: reclame, nieuws en het weerbericht op Radio SBS.
1: इस तरह आशिकी का असर छोड़ जाऊंगा।
2: मैं कुमार सानू और मैं आ रहा हूँ आपके शहर एम्स्टर्डम में।
3: मैं अनुराधा पौडवाल आ रही हूँ एम्स्टर्डम में।
1: राह में उनसे मुलाकात हो गई।
2: 6th of September, unforgettable 90s.
3: के लिए ला रहे हैं राघा इवेंट्स फ्रॉम हॉलैंड।
2: क्या आप अपना टिकट जल्दी से बुक कर लीजिए।
4: राघा इवेंट्स प्राउडली प्रेजेंट्स अनफॉरगेटेबल 90s लाइव इन कॉन्सर्ट द टाइगर ऑफ

जो नहीं तो कुछ भी नहीं इस सॉन्ग दूर ग्लेन जॉन एंड कम टू द फिल्म वो लम्हे। Gaan we daar verder met Birthday Bash, gezongen door Yo-Yo Honey Singh uit de film Dilli Wali Zalim Girlfriend.

हमको मालूम है इश्क मासूम है, दिल से हो जाती है गलतियां। सोनू निगम और साधना सरगम की आवाज में आपने सुना ये बेहतरीन गाना फिल्म जाने मन से। और अब आप सुनिए उदित नारायण और श्रेया घोषाल की आवाज में फिल्म विवाह से, मुझे हक है।

जन्म जन्म जन्म साथ चलना यूं ही। अरिजीत सिंह और अंतरा मित्रा की आवाज में आपने सुना फिल्म दिलवाले से ये बेहतरीन गाना। और अब आप सुनिए फिल्म फना से, देखो ना, सोनू निगम और सुनिधि चौहान की आवाज में।

तेरे हम सफर, क्या तुझको इतनी सी भी है खबर। इस सॉन्ग दूर अखिल सचदेव एंड कॉम आयो द फिल्म बद्री की दुल्हनिया। आयो द फिल्म मैंने दिल तुझको दिया, कॉम खो सॉन्ग दूर सोनू निगम एंड सुनिधि चौहान। मैंने दिल तुझको दिया, इन प्रोग्राम गीतों के लहर फिया रेडियो SBS।

मैं फिर भी तुमको चाहूंगी इज आउट ऑफ द फिल्म हॉल गर्लफ्रेंड एंड इज गजोंग दोर अरिजीत सिंह एंड शशा तिरुपाठी. हाउ द फेदर मैट जुबेर नौटियाल मैट आउट द फिल्म सनक. सुना है तेरे दिल पे मेरा, कहीं ना कहीं नाम लिखा है.

ना। दस बहाने करके ले गया दिल, द 2.0 वर्सी आउट द फिल्म बागी 3 इज गसंग दो शान, तुलसी कुमार, के विशाल दतलानी एंड शेखर अफजियानी। एंड दैट कम्स आउट द एल्बम तेरा चेहरा गसंग दो अदनान सामी खान, तेरा चेहरा जब नजर आए।

0: reclame, nieuws en het weerbericht op Radio SBS.
1: Is aashiqui ka asar chhod jaunga.
2: Main Kumar Sanu aur main aa raha hu aapke shehar Amsterdam mein.
3: Main Anuradha Porwal aa rahi hu Amsterdam mein.
1: Raah mein unse mulaqat ho gayi.
2: 6th of September, unforgettable 90s.
3: आप अपना टिकट
2: जल्दी से बुक कर लीजिए.
4: रागा इवेंट्स प्राउडली प्रेजेंट्स अनफॉरगेटेबल 90s लाइव इन कॉन्सर्ट द टाइगर

दिलबर मेरे कब तक मुझे यूं ऐसे ही तड़पाओगे, वास आउट द फिल्म सत्य पे सत्ता फान अमिताभ बच्चन एंड हेमा मालिनी। हाँ तो फिर मैं आउट द फिल्म लव यात्री इन प्रोग्राम गीतों के लहर फिया रेडियो SBS इस गजों दुर आतिफ असलम तेरा हुआ।

हाय, क्या थे वो दिन। बस द फिल्म छिछोरे, द फिल्म फन सुशांत सिंह राजपूत सामा में श्रद्धा कपूर, द लीडर्स गजोंग दोर तुषार जोशी, गजोंग दोर अलका याचिक कम तुत फोहत लीजिए इन प्रोग्राम गीतों के लहर। द फिल्म तुमको ना भूल पाएंगे, कौन क्या हुआ तुझे।

फोटोग्राफी इज अ हॉबी दर्शन, नॉट अ करियर. पहले तुम अपना फ्यूचर संभालो, फिर हमारे फ्यूचर के बारे में सोचना.